0: 99.4 रेडियो थाहा संचार स्टुडियो टाइम
1: इट्स 10 एएम
0: रेडियो थाहा संचार 99.4 मा अबको प्रस्तुति
1: थाहा अपडेट

0: sip on ya. Extreme energy drink.
1: रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ट्ज।

0: सुनकाली, आज राति हामी भाग्न पर्छ है।
1: मारिहाल्छु नि फेरि।
0: रातिको 2 बजी तिम्रो आमाले कहाँ देख्छिन् त भने।

जनहित का लागी नेपाल सरकार महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय को सहयोग रेडियो दिदी बहिनी 95.2 मेगाहर्ज को सहकार्यमा कुष्मा नगरपालिका पर्वत

0: अस्तर उद्योग मालढुङ्गा देखि बेनी जाने बाटोमा लस्ती बजार पर्वत
1: फोन 068-26-144 98-510-16-094 98-476-39-691
2: निकटमा दिदी बहिनी विकटमा दिदी बहिनी यो रेडियो दिदी बहिनी।